एक जमाने में माचिस की डिब्बियों का शहर कहा जाता था और पेंशनर्स पैराडाइज भी, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी से रिटायर होने के बाद यहां बसना चाहते थे। आज इसे सिटी ऑफ गार्डन्स और सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जो कि वेल प्लान्ड है, सेक्टर्स में बटी है और बहुत साफ है। यहां की एक जगह का नाम जैसे ही मैं लूंगी ना, आप इस जगह को पहचान जाएंगे, रॉक गार्डन। जी हाँ, ये है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की मिलीजुली राजधानी और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इसी की बातें करेंगे आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर में।

हिमालय की शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा चंडीगढ़ बहुत पुराना शहर बिल्कुल नहीं है। पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो अपने पंजाब के लिए नई राजधानी की तलाश शुरू हुई और तब एक नए शहर की परिकल्पना की गई। योजना और डिजाइन का काम शुरू किया अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर ने, लेकिन जब उनके एक साथी की मौत हो गई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर इस काम को अंजाम दिया फ्रेंच आर्किटेक्ट कॉर्बुसियर ने। अक्टूबर 1953 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया। जब इस शहर को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था तो ऐसे कई अवशेष मिले जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा स्थलों की खुदाई में पाए गए अवशेषों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। इससे ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद यहां तक फैली हुई थी। फिलहाल तो यहां पंजाबी कल्चर फैला हुआ है और हमारे प्रोग्राम में भी पंजाबी सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला गाना नया दौर फिल्म से।

चंडीगढ़ का मतलब है चंडी का गढ़, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पास के गांव में माँ चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक पुराना किला, इन दोनों को मिलाकर बना चंडीगढ़। चंडी मंदिर के अलावा माता जयंती मंदिर, शीतला माता मंदिर, माता बसंती मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर मन्नी माजरा में है, मनसा देवी मंदिर। मन्नी माजरा में दो ऐतिहासिक मस्जिदें भी देखी जा सकती हैं। तो चंडीगढ़ जब जाएं तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और बातें हो रही हैं चंडीगढ़ की। ये नाम आते ही ना नेक चंद जी का बना हुआ रॉक गार्डन याद आ जाता है, जो उस समय अपनी तरह का अनूठा प्रयास था। आज तो आपको बहुत सारे ऐसे गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी हैं कई, मगर जब नेक चंद जी ने इसे बनाया था तो ये चंडीगढ़ की पहचान बन गया था। लंग्स ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जानी जाती है लेजर वैली, जो पार्कों और बागीचों की एक श्रृंखला है। सेक्टर 1 से शुरू होकर ये सेक्टर 53 पर खत्म होती है, जिसमें कुल 12 पार्क और उद्यान है। इनमें राजेंद्र पार्क, रोज गार्डन, टोपियारी पार्क, टेरेस गार्डन, फिटनेस ट्रेल्स, शांति कुंज, बोटानिकल गार्डन, हिबिस्कस गार्डन और स्मृति उपवन शामिल हैं। जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आप 1600 से ज्यादा किस्म के गुलाब के फूल देख सकते हैं। शांति कुंज में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की बड़ी मात्रा पाई जाती है। टेरेस्ड गार्डन में अपने म्यूजिकल फाउंटेन की वजह से मशहूर है, जो शाम के समय जगमगाता है और संगीत की धुन पर चलता है। इनके अलावा जापानीज गार्डन, गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस और गार्डन ऑफ पाम्स भी देखने लायक है।
2: उसका जवाब सस्ता देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ,
4: बागों में बाहर है

0: प्यार है।
1: चंडीगढ़ में दो मशहूर झीलें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुखना और ढांसा। सुखना झील में कई तरह की बतख और गीज परमानेंटली देखी जा सकती हैं और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहां आकर डेरा डाल लेते हैं। सुखना झील से ही जुड़ा है सुखना वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर आपको बहुत सारे जीव जंतु पंछी देखने को मिल जाते हैं, जानवरों पंछियों और पेड़ पौधों और दूसरी कई वन पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए इसे 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 2006 में बना सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बहुत ही सुंदर है। यहां पर आप नीम पीपल शीशम जैसे पेड़ों के अलावा देख पाएंगे तरह तरह के पक्षी। वैसे अगर आपको तोते पसंद हैं तो आप तोता पक्षी अभयारण्य जा सकते हैं जिसे सिटी बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। यहां सैकड़ों की संख्या में रंग बिरंगे तोते हैं जो कहीं झुंड में बैठे हुए कहीं उड़ते हुए आपको दिख जाएंगे तो कहीं बतियाते हुए

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ। आप सुन रहे हैं तस्वीर और आज बात हो रही है चंडीगढ़ की। और मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ शहर की जब परिकल्पना की गई तो उसकी योजना का काम दिया गया ली कार्बूसियर को। उन्होंने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई बल्कि कई स्मारक भी दिए चंडीगढ़ को, जिन्हें चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 100 एकड़ के विशाल परिसर में देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। इस परिसर में पैलेस ऑफ असेंबली, सचिवालय भवन, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और एक झील के अलावा हैं 4 स्मारक। पंजाब विभाजन के शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक, प्रसिद्ध ओपन हैंड स्मारक टावर ऑफ शैडोज और जियोमेट्रिक हिल। ओपन हैंड स्मारक शांति, एकता और खुलेपन का सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। टावर ऑफ शैडोज को सौर गति का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें टावर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पड़ने वाली छायाओं का उपयोग करके सूर्य के मार्ग का पता लगाया गया था। जियोमेट्रिक हिल को पास की विधानसभा की बिल्डिंग को छुपाने के लिए बनाया गया था और ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट से बना है। टीले के आकार के इस मॉन्यूमेंट के आसपास कुछ कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। तो जब भी आप चंडीगढ़ जाएं तो इस परिसर को जरूर देखें, जो कि मैंने आपको बताया था क्या नाम है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स।

0: इसी तरह का जो मिजाज है ना, वो आपको मिलेगा जब चंडीगढ़ में मेगा कार्निवल जब आयोजित होता है और आप वहां जाएंगे। तो ये होता है हर साल नवंबर के आखिर में, और इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियों के साथ साथ बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मानसून में सुखना झील के आसपास आयोजित किया जाता है मैंगो फेस्टिवल, जहां आम की ढेरों वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी, और आम तो ज्यादातर लोगों को पसंद आता ही है। इसके अलावा नवरात्रि, लोहड़ी, वसंत, बैसाखी, मतलब सभी त्योहार जो हैं वो बहुत धूमधाम से पंजाब में मनाए जाते हैं, और ऐसा ही त्योहारों वाला, मेले वाला फील लेकर आ रहा है ये अगला गाना पवित्र पापी फिल्म से।
1: लेते सैया ओढ़नी, हो लेते

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक।

आ गया ना त्योहारों वाला फील भी आपको। शहरीकरण की चकाचौंध होते हुए भी ना चंडीगढ़ जो है वो संस्कृति से सभ्यता से भरपूर है और इस तरह का फील ना आपको वहां मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हरियाली भी हर तरफ नजर आएगी, जंगल से घिरा है, बरगद नीलगिरी के पेड़ हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। और शायद यही वजह है कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, फिर भी यहाँ की आबो हवा साफ सुथरी है। हाँ, ट्रैफिक पिछले कुछ सालों के मुकाबले बढ़ा है पर अभी भी मेट्रो सिटीज से बेहतर है। चंडीगढ़ में शॉपिंग करनी हो तो सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में कमर्शियल मार्केट्स हैं, जहां से आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं, फुलकारी आइटम्स, पंजाबी जूतियां शास्त्री मार्केट से खरीद सकते हैं। वैसे चंडीगढ़ ड्राई फ्रूट्स के लिए भी मशहूर है और पंजाब में है तो हर तरह के पंजाबी फूड आइटम्स का स्वाद तो आप यहाँ ले ही सकते हैं। अभी तो आप आनंद उठाइए इसी तरह की छेड़छाड़ का।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो

या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है, और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और चंडीगढ़ की आज हमने बातें की हैं। और अब आपका दिल में अगर आ रहा है कि चंडीगढ़ जाना ही है तो फिर अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम सबसे बेस्ट है चंडीगढ़ घूमने के लिए। अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं यानी कि एरोप्लेन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, तो चंडीगढ़ में है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाना चाहें तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, केरल और चेन्नई से चंडीगढ़ तक सीधी रेल सेवा है। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से सड़क परिवहन निगम की बसें भी चलती हैं, तो आप चाहें तो लग्जरी बसों से भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं या फिर अपनी कार में, जैसा कि ज्यादातर दिल्ली वाले करते हैं, कार उठाई और किसी भी वीकेंड पर चंडीगढ़ पहुंच गए। आप चाहें तो लंबी छुट्टियों में, चाहें तो वीकेंड पर जा सकते हैं। तो आज का चंडीगढ़ तक का सफर तस्वीर यहीं तक। अब नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मैं आज छोड़े जा रही हूँ, आप उसका आनंद उठाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय

0: संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as

घर सिर्फ दीवारों में नहीं बसता, वो बसता है उन आवाजों में जो सुबह चाय की भाप के साथ उठती हैं और शाम को थकी हुई मुस्कान बनकर लौटती हैं। घर वो है जहां बातें कभी पूरी नहीं होती और खामोशियां भी अपनी सी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर इन्हीं एहसासों, इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों और रिश्तों की गर्माहट को समेटे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। आइए इस आंगन में कुछ देर ठहरते हैं जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और हर बात दिल तक उतरती है।

फिल्म दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और इसी विशेष अवसर पर हम बात कर रहे हैं इस प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ी उन स्मृतियों, ध्वनियों और कहानियों की जिन्होंने पीढ़ियों तक श्रोताओं को और उनके जीवन को छुआ है। इस कड़ी में आज बात आकाशवाणी की उस संगीत धुन की जिसे सुनते ही बरबस एक आत्मीय एहसास मन में उतर आता है। कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे पीढ़ियों की स्मृतियों में बस जाती हैं। आकाशवाणी की संगीत धुन भी ऐसी ही एक धुन है जो आज भी सुनाई दे जाए तो बीते समय की सुबहें रेडियो के आसपास बैठा परिवार और एक अलग सी आत्मीयता याद आ जाती है। सुबह के प्रसारण के आरंभ में बजने वाली यह धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आकाशवाणी की पहचान है। इस ऐतिहासिक धुन की रचना ऑस्ट्रियाई मूल के संगीतकार वॉल्टर कॉफमैन ने की थी जो 1930 के दशक में आकाशवाणी मुंबई केंद्र से जुड़े थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेरित इस धुन में राग शिवरंजनी पर आधारित है हमारी ये संकेत धुन और इसे प्रसिद्ध वायलिन वादक महली मेहता ने इसको स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय बदला, तकनीक बदली, सुनने के माध्यम भी बदल गए, लेकिन आकाशवाणी की यह धुन आज भी वही अपनापन लिए हुए है जो कभी करोड़ों भारतीय घरों की सुबहों में गूंजा करती थी। वैसे भी अभी हम दोपहर में हमारे कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए हैं, लेकिन उस धुन को याद करते हुए हम सुबह को क्यों ना याद करें जब इस धुन की वजह से सभी की सुबह एकदम संगीतमय और एक अलग ही जिंदगी को एक अलग ही मंत्र देती हुई शुरू होती थी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: जी हाँ, आकाशवाणी के इन्हीं यादों को संजोए हमने आपके साथ बात की थी हमारी आकाशवाणी के संकेत धुन की। और देखिए ना, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमारा और आपका जो रिश्ता है वो किस तरह से कायम होता है, फिर भी बता देती हूँ। एक ईमेल है, जी हाँ, एक ईमेल आईडी है जो है fmgoldga@gmail.com। तो बस इसके जरिए आप पर हम जुड़ पाते हैं, आपकी बातें, आपकी राय, आपके मशवरे, आपकी बातें सब हम यहाँ पर शुमार कर पाते हैं। तो बस आपको और इंतजार मत करवाइए हमें और अपनी बातें हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। देखिए, इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर दिल्ली से। वो लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार, आकाशवाणी पे बात करके और उसकी धुन के बारे में बता के आपने बचपन की याद दिला दी, थैंक्स। जी हाँ, अब देखिए ना, गोल्ड हमारा जो FM गोल्ड है वो बना ही इसलिए है कि

पुरानी सारी यादों को आपके साथ बांटता रहे, भले ही वो पुराने गाने हों और पुरानी बातें हों। लेकिन देखिए, इन दिनों तो हम आकाशवाणी के 90 सालों को यहाँ पर बहुत खूबसूरती से मना रहे हैं, तो आप भी सुनना न भूलिएगा मंगलवार और गुरुवार को हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है वो है ना, यादों की रंग जो है। तो बस हम बात कर रहे हैं किसकी, घर आंगन की, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत अलग सी एक योजना के बारे में। जी हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसा है कि माँ बनना किसी भी स्त्री के जीवन का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होता है ना। और ऐसे समय में सही पोषण, पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य देखभाल केवल माँ के लिए ही नहीं बल्कि शिशु के स्वस्थ भविष्य के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की। यह योजना वर्ष 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि गर्भावस्था के दौरान उन्हें बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। योजना के अंतर्गत ना जो महिलाएं हैं उनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है। और वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ना पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 की सहायता दी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 2.0 के अंतर्गत दूसरी संतान यदि बालिका हो तो ₹6,000 की सहायता का प्रावधान भी है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक सहयोग देना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और शिशु टीकाकरण के प्रति जागरूक करना भी है। कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ माँ केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, वह आने वाले समाज की नींव गढ़ती है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप सभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.wcd.gov.in या pmmvy.wcd.gov.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस योजना की जानकारी अपने आसपास जो भी गर्भवती स्त्री हो उस तक जरूर पहुंचाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: फिल्म ना खुदा में आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

बताइए, इस तरह से कोई मना करता है भला चाय पीने के लिए? हम चाय पर तो जरूर जाना चाहिए। फिलहाल तो बताऊं आपको कि ये जो गाना है ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, सौतन फिल्म से ये गीत था जिसे सावन कुमार ने लिखा था और इसका संगीत उनकी पत्नी उषा खन्ना ने तैयार किया था। और भी बातें हैं उनके बारे में, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं मशहूर फिल्मकार सावन कुमार की। और इसके अलावा जी हां, फिल्में बनाने के अलावा सावन कुमार गाने भी लिखा करते थे, स्क्रीन प्ले भी लिखा करते थे। उनसे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो मैं आपको आज सुनाती हूं कि किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह के जीनियस थे सावन कुमार। दोस्तों फिल्म हवस से जुड़ी हुई ये कहानी है। फिल्म का नाम हवस था जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। हवस में नीतू और अनिल धवन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। कहते हैं कि सावन कुमार एक बहुत ही मशहूर गीतकार के पास गए थे हवस के गाने लिखवाने के लिए, लेकिन फीस को लेकर बात नहीं बनी। सावन कुमार ने उन्हें बहुत बहुत मनाया लेकिन वे नहीं माने। अब सावन अंदर से काफी उदास हुए और इसी उदासी में उन्होंने एक गाना लिख दिया। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद।

नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 मई महीने की 18 तारीख व दिन है सोमवार।

श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्रिकी सहायक श्री ए के दास और सुश्री शिका देखा, मुनपा में उद्घोषक श्री सांगे ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किजांग लामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबान केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिडी न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiangshan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110 kg+ category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader Veeru Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार, साझेदारी के दूसरे चरण और

0: भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा

0: बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक

0: श्रृंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार जी से चंद हिंदी देवगीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार जी से चंद हिंदी देवगीत। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद वंगचो आधुनिक गीतों का वंखव वंगसु के आवाज में। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे चंद वंगचो आधुनिक गीतों का वंक वंगसु की आवाज में। श्रोताओं, तो इसके साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जेएनवी तवांग के 9वीं कक्षा के छात्र कुमारी सांगी चोजुम देरू से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। परंपरा और संस्कार से ही बनती है असली मानता हमारी। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुमारी सांगी चोजुम देरू, पीएमसी जेएनवी तवांग, कक्षा 9वीं की छात्रा, आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व पर है। हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। यह पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। जब हम कहते हैं स्थानीय संस्कृति, तो इसका मतलब है कि हमारे गांव, शहर या प्रदेश की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक कला, लोकगीत, पहनावा, त्योहार और भाषा, यह हमारी पहचान और गौरव को दर्शाती है। स्थानीय संस्कृति हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और उन्होंने हमें कौन से संस्कार दिए हैं। जब हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमें अपने देश और समाज पर गर्व महसूस होता है। आज के आधुनिक युग में हम नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। यह जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम विदेशी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी भाषा और परंपराओं से दूर हो जाते हैं।

0: जो हमारे लिए ठीक नहीं है। स्थानीय संस्कृति का महत्व केवल हमारी पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें नैतिकता, भाईचारे और एकता भी सिखाती है। हमारे त्योहार हमें मिलजुल कर रहना भी सिखाती है, और हमारी परंपराएं बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाती है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य देश विदेश के लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे पर्यटन बढ़ता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्थानीय संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी सिखाती है। हमारे कई रीति रिवाज पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जल, जंगल और भूमि की रक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को बचाना है तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपने त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को अपनाएं और उस पर गर्व करें। संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, स्थानीय परंपरा ही है देश का सार। नई पीढ़ी को इसे समझाएं, अपनी पहचान को जीवंत बनाएं, भारत को सशक्त और मजबूत बनाएं, देश के विकास में इसका मान बढ़ाएं, देश के विकास में इसका मान बढ़ाएं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेएनवी तवांग के नवी कक्षा के छात्र कुमारी संगे चुसुमदेरू से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नुरान के आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए अब आनंद लेते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा बशीन की आवाज में यह गीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सुहेल सेन ने।

मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से आइए अब आनंद लेते हैं उदित नारायण की आवाज में यह गीत। समीर अंजान के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

मिस्टर और मिसेस माही फिल्म इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबाव केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के करीब इस वक्त दोपहर के 3:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं भूल चूक माफ फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में। इरशाद कामिल के इस गीत लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है तनिष्क बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आनंद लेते हैं बवाल फिल्म से, विशाल मिश्रा, जरा खान और रोमी के युगल आवाजों में। अराफत महमूद के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है तनिष्क बख्शी ने।

श्रीकांत फिल्म से आइए अब आनंद लेते हैं जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार के युगल आवाजों में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं श्लोक लाल तथा संगीतकार हैं तनिष्क बग्ची।

हसीन दिलरुबा फिल्म से आइए बाना लेते हैं अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में यह गीत। पटवर्धन जी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

योद्धा फिल्म से आइए बानन लेते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में यह गीत। कौशल किशोर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है स्वयं विशाल मिश्रा ने।

दो पत्ती फिल्म से आइए बाना लेते हैं परंपरा टेंडोन की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार है कौशल मुनीर तथा संगीतकार है सचेत परंपरा।

0: सूरमा फिल्म से आइए वाना लेते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में यह गीत। गुलजार साहब के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

सैयारा फिल्म से ही आइए बानन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक के आवाज में। राजशेखर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है स्वयं विशाल मिश्रा ने।

सयारा फिल्म के इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के क्रम के अनुसार इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टूर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित मेचुकावेल स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 1 हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न। नौवे राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेले मुकाबले। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग स्थित वांगहू गांव के 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका ओस्लो के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टूर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत करने से लेकर अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, तय करने और चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उन्हें स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाश।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग उगोल में सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन

0: मूल मंत्र पर काम कर रही है। श्री मोदी ने स्वीडन कंपनियों में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बनाने का आग्रह भी किया। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले स्थित मेचुका वैली स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए एक हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसका संचालन भारतीय सेना के योग्य प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगियों में आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों, परिस्थितियों के प्रति सजगता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनका लक्ष्य उनकी सहन शक्ति और जीवन के लिए लक्ष्य आवश्यक कौशल को निखारना है। इस पहल में छात्रों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और स्थानीय समुदाय ने भी इसकी भरपूर सराहना की। व्यवहारिक कौशल सिखाने के साथ साथ इस शिविर का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में देश के प्रति प्रेरणा देना था। नौवे राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेल मुकाबले और जबरदस्त देखा गया। वॉलीबॉल मुकाबले रविवार को शियोम आर्मी ग्राउंड के आधिकारिक तौर पर शुरू हुए, जिनमें कुल 12 वॉलीबॉल मैच सफलतापूर्वक आयोजित हुए। इसके साथ ही फुटबॉल मुकाबले खेले गए, जिसमें बॉयज के 10 लीग मैच और गर्ल्स के 8 लीग मैच खेले गए। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कमिंग स्थित वांगहू गांव में 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर एवं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य युवा छात्रों में नेतृत्व के गुण, अनुशासन, साहसिक भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। डॉ. अंशु जमसेनपा द्वारा आयोजित इस पहल का मुख्य जोर जीवन को बदलने वाली ऐसी प्रशिक्षण पर है, जो छात्रों को अपनी असली क्षमता पहचानने में मदद करती है। साथ ही ये ट्रेनिंग उनमें भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी जरूरी साहस और दृढ़ संकल्प भी विकसित करती है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रोकने की भी संवैधानिक मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी गहन तथा 60 नए राजमार्ग कश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों से रवाना किए गए।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा है कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों तवांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, शियोमी, दिवांग वैली, अंजाव और चांगलांग को छोड़ अन्य सभी

0: previously. Indian Railways has said that a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing on the platform. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: मीडियम वेव किलोहर्ट्स क्या चलाने खेली थी मीटर कैनिंग के बिचिनिस का उज आकाशवाणी तवंग यंबुर लंगे संगमा नब्दिक सुजले मामुनी दा नमनिन गोतो आकाशवाणी तवंग देश नब्दिक मनबक लेरम बानंग गोतुदुर लेरम संगन लंगे संगमशल नदाचे थुदन तशिसी समरी तशि दिलेंगे जुदुर देशी चलोंगे तुम खेले ग्रोलोग Chindangapak, Tarik, Chipket, Boy Gelo, Nitung, Ganin Kane Chuksum, Rabne, Meta Lok, Boyda, Shibusagodava, Sesnei, Reza, Davimbur, Agashwani Tawank, Lerim Banang, FM Frequency, Ganin Bli, Megahertz Gaye, Sametoimbur, Langananda, Monbulerim Godamp, Namtar Lerim Chitkotudur, Desh Ud Lerima, Gese Chinpo, Jivalasi, Zenamo, Chenju Chenmo, Tulku Tenzin Gurme, Rambuchasi, Monkega, Guria, Deshenamo, Gorem Nibjit Sanasa.
2: Ambusha Tashtele, Tadesh, Marmutuji, Tang, Sam Nigo Soloka Chirmar, Sena Beni Shuin.
3: Kasi Nego Sujumzen Sienina, Penang Prince, Daraj Kumar. Ejigse. अच्छा शिवला न्यामें गया था बोलो ये ना मर कांबुश नोमे ना तबे नांग न्यामो तो ये ना ना जब माया को न्यामे मेंग थे नोमे क्या मेंग ये तो मैं उठ्या वाले जब या चलो शुरू जब नेगा मेंग सुंबली नोम्शो इसे अगरा ना कुंबा का को नो मिथी से मेंग ब्लीलेंग आया इसे तवांग एस्टिक मेंग सुई थी आया तवांग कुंबा का तो क्लास नेगा मेंग सुई थी एस्टी नेगा मेंग सुई थी आइडेंटिटी कार्ड नेगा मेंग मिथी से मेंग ब्लीलेंग खरेगा तुम ना इसे शुरू जब को रहे तो मैं उड़े Tabaya were not a rabjuny. Not a tabaya yugi, demremo to the adome. Is it a rabjuny with meng sarpati, bidumda? Is it shuji binon dombashea, kisu, yelong, yerumbatumanum? Is it shaya meng su, su, su, tabjum? Rang lama severe, lama ben a yawrumchi, kundungi, rabjumuina, yawrumchi, not a senji, dinsin, jasui meore, dinsin jetabjum. Utmoto. The meng shade yangarad. Lama suk tunga inang rabdo junga kanjuk cheba nome. Taone shiva laji, ta bina kasi inina prince ime ore. Ta prince ya boru bina shuk che kabo tiga gejuk duzu ome. Kabo tiga gejuk duzu ome boru. Ijik bina da nye kabo tsawa nina maya o nye. Ta kabo nye jenye ya juk teba imono. Si ga su ju teba imono. Nye jik bina ki gai. Ta ki gai lo ju kambo shumo oso ya ya. Tar nalenta ga pep. Ore nalenta university kambo se tongyo ome. Nalenda ka pep, ejek nalenda ka be tabaya. Ta tabaya bor binang ki jigen che na bena t-shirt che jigen ki meng che kevel ha nye ote. Kevel ha nye ote nom ta jigen ore. Ta jigen ki meng che kevel ha nye meng sur che lha nye me ore sar nye. Ichik se bisha meng che shival ha nye meng thokun che bina jigen meng taba nye me ore. Kese chumbo shival ha da ut kambo se kien ore. Oya ut injim je sim ka nye na be o. Kese chumbo shival ha. Ta nalenda nyago je gayat nolo ni na desh ta negor phe monyong suga monombur nalenda nyago je ichik tyuga nga nangbok learning center konbathi meno yaya chi ut neng lochong ya ju chaba ya ju kom ya ju ta chambuling neng learning center university na ta chen nalenda nalenda university me nalenda university neng dusu thi ga neng student pandit 30-40,000 noktam nam da india ta ina bolo ju ga Kombusia Suina. The Nalenda University J. Gate Blee, Shargo, Nugo, Chango, Nevore, Direction Titisha, Kego Tem Titi. Kego Titisha, Guardian Titinum, Guardian in a Kego Sunga Magun Odore, Potanga in a Magun Suime. Nalenda Udneng a chip scholar, Kevin number of a Titi Gate Titi Nijinidum. Kumzinja Sienna,

0: pula buma thabu shong la ngai dumme tiani na chi cha la ngai dum en bakti nga dang tegen nga dang taung ne nga patient yor dinom dang nga dang choe man ga ne nga ta dialysis no chi ki nga li dialysis ya dumme ta kidney fail ga yo chi utna ai gyum sen di che khon na te pule tamang shu di pressure chi ke ran ni me pressure high su chi tom ni yor di pressure high su man ma ja yo chu ke ta pressure high su che kidney ga kyun dumme ichi pressure high oya na suna chuk melong ai kyun melong ma dong shong hypertension retinopathy ni utka e complication tiro ten your thing atang ct tong do ni na stroke patient ni do me stroke ni nga ye stroke na ka nei ro dum lat pa ne nga pressure high ge ya lat pa ne nga khra de lang gai cha de man ge ya khra gai dum me ichik stroke lang gai pe lai shong lang gai bak ti pressure your high tom ni your se na khra de garb shong lang gai ichik garb ji khra ji lat pa ne nga de lang gai na gu me mo shong chuk pe lai shong lang gai dum me ichik utte pul nga nga na pressure chi ki nga dang nga dang ya kyun your de ro chi ki na chi ni dum me pressure chi control ya ni go su kha do im ni
1: yes ta doctor sabse hypertension so si nam utso ge ro do inam ichi kor da tnang doctor sab ta pang kris ngo to de da mena patient do mo nat pa da ina ne me honumbul ve jan mo doctor na ne me honumbul hypertension yo so da high blood pressure tsuki da ngathang maap ti kang athi ya de honumbul ya bu da utso chi ta da gung lo thora pibu na sha ra sho no wa shon bu na sha no wa prisho na sha utta nga da su sha ra sho no inam
0: तो ओयन ये ना द पेशेंट ये कंजे ना का नहीं का सीनियर को नोम में ना दा चे ना दा क्या कर किट का ये ना प्राइमरी ये ना प्राइमरी हाइपरटेंशन ये दम दा प्राइमरी हाइपरटेंशन चे काया रो दुनिया दा ना दा तब हम अग्यू या पाक्ती चे ना दा हम नांशे रहने उन्हें नांशे रह चुके नो ओये दिशों लंगे दम में bakti nga tang Africa shok minanje the race ni na birshe mangsho di tondu me bakti da mangsho di deshno ma sit ni na the lifestyle chit nga ta sadan kya dan ki kyun ra su ji ki shel mang khrao nga ta weight mang khrao ji ki obesity ji ki ut ki kyun ra su ji bp high lang shong lang gai du me tan ut ji ga nga ta bakti mi bi se na un ko ko na nga ro pu le pressure high gai du me pregnancy induced hypertension ni ya उत प्रेशर हाई सुगो जी उनु के सर बोले चेक माया ना शुक पिदिए प्रेशर हाई सोंग ओय रोदु में त उनु ना जे मोरदु ने ना ओय मोरदु में सियन ने सेकेंडरी हाइपरटेंशन ने वत ना दा जे प्राइमरी हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन गा ता सदान खेदा न्या रिक ने ना त इचिक गुमजन जी की रोदु में त सेकेंडरी हाइपरटेंशन के जन्म न स ने ना फियोक्रोमोसाइटोमा ने या में ना कोन सिंड्रोम ने अल्डोस्टेरोन हाई गया इचिक किडनी ने गा चाती गे जे उत ब्लॉक या गे ना रिनो वास्कुलर डिजीज उत की ए प्रेशर हाई तो उत उनु ना जे रे चो गनम त देश नो सि ने ना उनु ना ए मांशो ति गा तंग स्नैक्स नान क्यो जंक फूड ना मांशो के शे चित मांशो ने तंगरा रंग गा दि टोंग पुले ति त क्लास 10 बुचु ना ना प्रेशर हाई जों एन गा तंग उजो ए द तुमने खली ओंग शोम नै लु रे रंग डायलिसिस या कन शोम लंग एम सि ने प्रेशर हाई नोम मे बिशे तो प्रेशर हाई ची की ब्रिशे किडनी ती क्यों रसु नो में तो ना दा ची ना ककदाम ची ना दा सदां खे दां ची ना उन्ना या हिंग्या या प्रेशर चिक चेक या तो अन मन का मन से ये चिक प्रेशर ची कंट्रोल या नी ना उत्की लक्ष्य सिगां मनु समझेंगे
1: ले सोला किंजन ठी तंग तो सदां खे दां मुर्गो ची ये तो डॉक्टर सब ना नां दो तो इन गा तंग दा नालंग निंग कुंजे लोग तो चे ठेंग सुम जो तुम बोल तो ये प्रेशर का क्यों चो तो चे साइन ना का सीजी रो दो नम
0: ना दा ची तंग गा स्टडीज का रिसर्च या पुले ते पुले सीधी गे दुनिया ना मी सामांशो सकन चित पेशर इंजी मिंजी हाई शोंग लंगे दुन ये दम दा
1: लेस
0: तंग आदा साथी घोटी सागो सुनिए ना डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साचित त पेशर नेकन मी थी शे 1500 मिलीग्राम ये दम है चिकतों ग्यालेगा मिलीग्राम नियम शो प्लांटिक उम्तिन दिले सादा बनुम ये दम तंग आदा पेशर मनु जकन शे 2300 मिलीग्राम ले मांशो सादा बनुम ये दम दा साचिके हाइपरटेंशन ने ना साच न्यूसो चाला गए ने ना पेशर न्यूसो गए दुम ये उत स्टडीज का तोम दा त देश नो इंडिकेट के ने ना डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन ये दम सतान खे दान दी चेंज गुरचे या प्रेशर जो न्यूसो या में जी का गतन शतान जे खेदान शतान का सीधी ने ना मांशो दी नट्स ने ना गतन नट्स ना उतना मांशो दी से फ्रूरा ना मांशो से इच फाइबर डाइट ने दम द फाइबर डाइट का रफेज उतना मांशो से लो फैट डाइट द फैट्स द नुम मार उम दिन जे न्यूसो बाचित उतना शनान खने हलेम दी मॉडरेट का शेगो सुन ने दम दा तंगादन चांतोंगन मीटिंग ने उचे मॉडरेट का थोंगो सुम ने मॉडरेट ने तक्ता चिक चांग ने गंजित न्यूशो यागो सुम ने दम ता चांग मोतोंगन ने तो डॉक्टर ना इमे मोतोंगन डॉक्टर राम जी दुमे थोंगन ने न्यूशो यागो सुम उचे गदक गदन एक्सरसाइज ने गंजित हालिम दे वाक ला या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ने दुमे

0: जिम में ने हालिम दे ब्रिस वॉकिंग लर्निंग उम दिन लाए एक्सरसाइज याना उत्की गतांग ल्यू का मिक्स चापुल गतांग से फंदो दो नि दम
1: लेसो हाई प्रेशर दे के ने चिंग गतांग डॉक्टर सबे ने नंग गता स्ट्रोक ने के या चिक हम बता न ते का दिपंग वेरो दो मोरे प्रेशर न्यू क्राउ चिक नेन शो वा निंग प्रेशर यू टोक राउ चिक नेन शो न
0: त ओयरो दे में पेशेंट न्यू क्राउ ने त मांजे ओए दि मरदु सम द सिया ने ना प्रेशर यो न्यू खरा ना त एसेंशियल हाइपरटेंशन ने ना प्राइमरी ने दो में प्राइमरी हाइपरटेंशन ने थी नो में प्राइमरी हाइपोटेंशन ये मुरुदुम सियान ने नज पेशेंट दी निंग नत पति जों लंगे इचिंग निंग की गुमे तु उचि की प्रेशर न्यू शो गे ना मत्ते सोइ हिम नम की मी प्रेशर न्यू शो ने मुरुदुम तु की सियान ने गतांग ओ ओपीडी रेकन ये मी योर दी या होन द वर्क प्रेशर लो रंग सुदुम ने ओय मुरुदुम लो सुगन ये ओय तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन ने ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ने या ती मत सोइ ती नम ने नम की द प्रेशर लो सुगन चित नत सोइ ती रोदुम द पेशेंट ती इन्फेक्शन ती गया तो लुका द गोंदी दा या इन्फेक्शन रे लंग गया इचिक पेशेंट ती न्यूशो गेन सेप्सिस इंड्यूस हाइपोटेंशन ने यम बाक्ति सदन के दन दी में ये एलर्जिक रे या एनाफिलेक्टिक पेशेंट लो लंग गेन उत एनाफिलेक्टिक शॉक ने त शॉक ती लगन चित नत ती दिम लो प्रेशर चित मांशी रोम द क्यों मांशो दिस इज रोद ने त लॉन्ग टर्म कते न त गेर इंचो कते न त प्रेशर हाई चिकी क्यों योर थी रोद में
1: लसो त प्रेशर थुशो ने इतने जी थुशो ने मोरे तंग त स्ट्रोक कई बात ही जो हम तो लोग देखा दिवलंग गया ये जो शुक्त त पैरालिसिस ने जोलंग द मोरे ये शोधी अंग त लानिंग लिमिन कुबे मोतो जोलंग गई ये जो शुक्त जाव जोंग गई मैंने जो त चामे मोतो तंबिगा चारुवसु उतन रोज मोरे तो उतना तंग त प्रेशर ने उतना रोज ने में पाजी त शे क्या पाते चमरो रोज मोरे त ओवरवेट ने में तोरे शे क्या प शेर कुचू क्या पाजी जो शेर क्या ला नोले रोज त न्यंजी थेंशो शे क्या पने कन जे प्रेशर मोशन रे किना
0: क्या पने कन जे प्रेशर हाई गेट मांशु रोद में ओबेसिटी द देश नो नता ने ओबेसिटी ने दमे ओवर वेट शेर मांखरा ओची के त शेर मांखरा ओची ना रंग त पैथोजेनेसिस ने सोइति तंगा दम बॉडी ची के एजेस या पुले यूरिटी केमिकल रिलीज या या इंटरलुकिन ना उद रिलीज यो ते रोदम दे उद रूल्स या पुले वास्कुलाइटिस ने ना प्रेशर ये हाई गे लंगे दमे इचिक नदा इंसुलिन ने ना नदा तोपचे दे सोपुले पेंक्रियास की इंसुलिन चोंदम द तोपचे डाइजेस या पुले उचे शोंग मे दे योजि के इंसुलिन रेसिस्टेंस ने डायबिटीज शोंग लंगे त 21st सेंचुरी का नदा ते पुले देश नो डायबिटीज एंड प्रेशर मांशो दी तोंद मे से ने ना शक यख पुची की द वेट मांखरा ओजे वेट ती गौतम दी गोसु ने ना हाइट या वेट ये BMI ने तुम द बसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ने 19 से 25 चोकन का बुच्ची का कोसुन ने तुम द
1: लेस टटरो सब था भारी वेट लिबुक चिन दशम नो त मंगरा लो शेर केला नो गनिंग चिन नो गनिंग खले नो उदुन त गत मिले गत तो आ सुनो नि मरे इतो ने ने था चिक था गत मॉर्निंग वॉक या ओला निंग एक किलोमीटर थिलो नेलो एक वॉक या के उदुन दिस शेर चित मोर चक्त यो ये ने चक्त दि मने सम दो पिनेता शेर मंगराव दिने रिप जेंचिती तंगा द नॉर्मल थेगा दे ओचुक शेर टोचुनिंग तुंजु निंग तुंजु थेगा ब्रेका दे रोचुक जे त शेर गला दे नो नेने चुक कहेर तो तोमक तोशी कहे खुसिन
0: थबशी इनेने त उत्का ओबेसिटी का ट्रीटमेंट त नका यो नो मे त त नका नो यो नेने नदा जे त सबान के दन जे बिना कंट्रोल या गोसो रही मे इन एक्सरसाइज ने कैलोरी कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट डाइट जे न्यूशो गोसो मे कार्बोहाइड्रेट का जीरो दो नेना तो नेना पेना अलुनिना उनाय न्यूशे केलोरी मांशो रोदम नुम्बा जेचे के सदान के मांशो सिगोसुन फुरा या नट्स या उद्य मांशो सिगोसुन फ्रूट्स न मांशो सिगोसुन नेदमे उत्से का बिना केलोरी बहन मांशो ते यागोसुन ने केलोरी ने ना गंदा चीज सुगोसुन ने ना एक्सरसाइज मांशो ते यागोसु रे यम बिना एने उत्से का द तो उद यामे ते मन्ये नोम द थपशी का मन्ये ना कन यो नोम मनची ते सिनो ने ना गंदा द देश नो सीमा ग्लूटाइट ने उद मन सर्प शोंग नोम द नादा जे अमेरिका ए ओलंपिक ने केटाती रसमुत उद मन बा चीज नोम मन की मे ते ना उत्से का सीती या दुने ऑपरेशन या मे ना नोम ब्रियाटिक सर्जरी ने ए सर्जरी ना रोदुम द नादा जे लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ने सदान खेदान एक्सरसाइज ना इम उत्से का मे ते ना उत्से का मन्ये नोम मन से का मुन ना ऑपरेशन या को सुरोदुम
1: लेसो द बीपी टेशम नो थोनो ने न हाई प्रेशर नो ने न तंग द इंजी गे न साइंस एंड सिम्टम्स दे मे त सेन ते के गरे
0: मान जी तंग द मी जी एडजस्ट के दु मे प्रेशर हाई ती गे न त सी ती ने न बिना से सिगान दे न रोमन मे इचिक चेकअप का मान जी दे रोमन उत्से का द इचिक ने दु मे मी नॉर्मल ती रे न सिगान दे मोन ने बी तुमने ठीक चेक ती प्रेशर ती चेक या न नम द से गु यु मे जे बिना नच ती ने न बिना से ना हार्ट का प्रॉब्लम ने या मिना बीशे डायबिटीज नो नेना मिना किडनी देना भीतर रेंबे रेंबे या बुद बुद के चेक या क्यों या को सुमे साइन सिम्टम हम पता लगा हाई गेलंग इन नेना तक सीत

0: na binan bakti stroke om din lang langai na ta hypertension emergency ni na bi dinzin munu jong langai ya me na bi mui ba jong ko khir ichi kot ne o e jong na ta pesa check ya ko so ro du me
1: les kini ta phamunang tesham no ta high pressure mutu no ne ne busu butu ba chi high pressure ta pe ta milgyu ka ke
0: milgyu ka no mun ne du me ta status ka te pula o ya gaya ti te du ni na manjo depression ne kan nam bi ka ju na ye khama na ye pressure high da ka na ye ro du me
1: les ola ta ta doctor sa bi na nang sin ta re ta Changzo chikngadanta lipo noto chile chik man product nye demon. Changzo kengatanta nitsika ina noto chira imbo. Peneta ozo hypertension ka inye. Changzo kengatasha tu uning chik noto matola chukuchi panu munumbo. Changzo kita pressure ka inye yo noto na.
0: The moderate nye na chatti thangmaka na dena da the pressure high langa yimu na ne.
1: Yes.
0: The bhakti binashi liver naza nye oye nye na ta halim thongla mo choko imna. तो लिवर नाचा उन दिन सिगांधी मनु छांग जी की नतु जी की नतु मनु ये ना तब इना मॉडरेट का थोंचो को ये तुम में मासी तो तुम तो ने तो डॉक्टर आंसे तुम दा
1: लेस तब प्रेशर यू थोक रहा हुआ है मिनु मुंह में खा हुआ है मिनु तब इना डॉक्टर आदि ये सुख चेपी ना खटांग दे बिना कुतिंद रही लो
0: तब प्रेशर ने ना का नहीं रो दो में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ने ना इचिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ने उत निंग गुदान चिकला शतम दा निंग कॉन्ट्रैक्ट या पुले निंग शेट गु पुले बिना प्रेशर थी जों दम इचिक निंग रिलैक्स गई पुले प्रेशर न्यू शो दी गई दम तो उत ने का नॉर्मल का गोत इन ये ना तब सिस्टोलिक प्रेशर ने निंग गु पुले शेट चो गु पुले उत प्रेशर चे 120 वाच का गोसुम ने दम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जे 120 ने ना ज्यादा खाली में इचिक डायस्टोलिक प्रेशर जे निंग रिलैक्स गई पुले प्रेशर थी गई थी जों दम ने ना गेजु वाका 80 वाका गोसुम ने दम दा
1: लेसो
0: इचिक हाई ने ना तंगा तंग स्टेजेस का सोई सोई से इलेवेटेड ने या स्टेज वन स्टेज 140 90 का माउंस हो गए ना गाता हाइपरटेंशन से दम दा मन बेगो सुरो दम ने दम दा
1: लेस तो उसे जो नजर टेप कटी या बिना दे नजर थोड़ा गे बोले दे सिस्टोलिक ने डायस्टोलिक ने से दे सिटी का तो गिर गए थे बिना
0: लॉस नजर चिकी ता ग्यूमजन थी प्रेशर रहे ना ग्यूमजन जी गाता एजिंग ने में मीन ये कंजन एजिंग गए गु में तो नजर यार यार यार यार या गए गो सु में नजर जरा गए बोले प्रेशर मांग शो दी रो दुम ये उत स्टडीज का तो नुम दा द डिफरेंस इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का गाता पल्स प्रेशर ने तुम उतने की खबर से माइनस जा बोले पल्स प्रेशर ने तुम द पल्स प्रेशर चित नतो जरा गए बोले प्रेशर डिफरेंस सिस्टोलिक चीन जरा दी गई इस डायस्टोलिक मुरा गई दम दाउत उत्पाद सोच मांस हो चौंला गई दम नतो जरा गए बोले
1: लेसो प्रेशर तो रने तो कदम ब्रेक ब्रेक आती चीज का पिंजी में जिया कोई किन तो अनुमान डॉक्टर ने नॉन मारे कदम रिम्बे नहीं है तो कदम जिक तान्य रिम्बे नहीं जगा या मन सीखना जी जाना चुक जगा नोट मन सेगा नहीं है मुझे या ब्रेक ब्रेक कदम प्रेशर चीन आना चीज का भी आपको सुबह नहीं नॉन मारे इजा बोल जिक उत्तंगा प्रेशर चेक हम देंगे मेशीन जे रोज मेरे प्रेम दी रोज खेमा लाभ से चेक हम जे रोज तीचो ची तकता मन खा रही है चेक हाउ निर खेमा ये रोज चेक हमने तुंदा थी रहा सोच नम
0: उतना प्रेशर चेक किया सुम नम ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग मन खा रही है डॉक्टर ने प्रेशर थी चेक किया इचिक होम बीपी मॉनिटरिंग ने दम दा खेमा ये या मशीन थी के चेक या में थी का इचिक तो नक थी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग या बीपी मशीन नक सोई थी रो दम दा 24 हावर्स प्लान थी पूरा जारी है किस यार गे दो मार गे दो ते में थी रो दम तो उत सुम का चे सीधे ने दम ते ना ने ना गंदा स्टेटस नेलब ने में छे या डॉक्टर ना चेक या दम उत मानु ने या देश नगर गाता मशीन थी रो दम बैठे सुत या उत यूज या चुकुम लेकिन यूज यादा तरीका थी रो दम गया थी यूज या कुछ नहीं ना उत मशीन चित ना था चित मशीन डॉक्टर बात चित कोसम तो साइंस नहीं ना वैलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं तुम यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन अमेरिकन आई ते बिरी उत मशीन ना का बाजार का ना का नॉन चित बिरी टेस्ट या उत मशीन चित या ना नाम दा रोको ने बिरी शतु चित उत मशीन चित यूज या ना नाम दा चित चित गिम दा खेमा ये चेक या चुको नुम खेमा गया चेक या कुछ नहीं ना लंग जब नहीं लूती चेक या नोप जब नहीं लूती चेक या भूत चिका कम थी लूती गैप थी नहीं को सुन रही गेप ने ना कम थी शुक जब नहीं लूती चेक या को सुन या तो हमने चे घंटा फिशर ना चे बिना रिलैक्स या सु छिन रहते है ना छिन जी खाली आया उच्चे का जाए ने ना कॉफी उम दिन मिजे या कैफेनेटेड ड्रिंक्स सिकाम दिन मिजे या चेयर थी का रिलैक्स या सु या चिक टेबल से का लानी या जो मशीन चित निंग रे का होंगो सुन ये तुम्हें तख्ता चित निंग का हाइट का यूर मेनी हुई है या उस यादा ची के दी तख्ता दिख ना होम बीपी मॉनिटरिंग या को सुन ये तुम दा होम मॉनिटरिंग के सिर्फ हम तो ना भक्ति मी रेकन चित भी मन का रहना प्रेशर नॉर्मल थी तो यूम खेमा गए ना हाई थी तो यूम उच्च गा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ये तुम डॉक्टर फेक पुले प्रेशर हाई की व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ती भक्ति मेन कांग रे या भी नॉर्मल

की सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के पहले भाग में आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना। तवांग जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना अनुसार सभी नागरिकों, ग्रामीणों, यात्रियों और पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि मागो छू के पास कंगरी ग्लेशियर का एक हिस्सा तेजी से टूटने के आशंका में है। इस वजह से वहां की बर्फ की झील फटने और जमीन खिसकने का बड़ा खतरा बना हुआ है। इसीलिए जिला प्रशासन आप सभी से अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का पालन करें। भारी बारिश या खराब मौसम में नदी के किनारे, पहाड़ों के नीचे या खतरे वाली जगहों पर बिल्कुल ना जाएं। अगर नदी का पानी अचानक बढ़ने लगे या पहाड़ों से अजीब आवाजें आएं तो तुरंत वहां से हटकर किसी ऊंचे और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। यात्री और पर्यटक कहीं भी निकलने से पहले मौसम और रास्ते का हाल जरूर जान लें। अगर आपको कोई भी खतरा महसूस हो या कोई अजीब हलचल दिखे तो तुरंत पुलिस, पास के सरकारी दफ्तर और आपका प्रबंधन की टीम को खबर करें। सूचना समाप्त हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के अगले भाग में आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम शेड्यूलर में आप सुनेंगे पीएम श्री जीएमएस कुंसे के बोधी टीचर तेंसिन फुनसो और साथ ही लुंगला, जिमिथंग और दुदुंकर एजुकेशन ब्लॉक के अन्य टीचरों से युनचक, सुम्पा, ख्यब्डो, समगे, गंगलोमा, तुंगशा, ग्यावे, शब्दन, डोलमा, डेमो, दुईपा, देंसिक मोल्लम, ग्यावे सिंगा और गोवा मुल्लम। आज शाम 7 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। आज शाम 7:30 पर फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। इनमें पहला संगीत आप सुनेंगे फिल्म सैम बहादुर सिंह, शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार के युगल आवाजों में, और अंतिम गीत का आप आनंद ले पाएंगे बॉर्डर टू फिल्म से अरिजीत सिंह, सोनू निगम, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाजों में। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर के युगल आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 19 मई 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर के 2 मीटिया न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे ग्यावंग मटके, अनी के संग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद बंगाली गीतों का लता मंगेशकर की आवाज में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात।

इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जे एन वी तवांग के आठवीं कक्षा के छात्र कुमारी देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प के कला विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में, अंग्रेजी मीडियम फिल्म से विशाल ददलानी और सचिन जिगर की आवाजों में, जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन की आवाज में और दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी के युगल आवाजों में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल दोपहर 3:50 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से अखिल सचदेव और मुंशील गुजराल की आवाजों में, कबीर सिंह फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में, बजरंगी बाईजान फिल्म से अतीफ असलम की आवाज में, तू झूठी मैं मक्कार फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में, ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, ब्रह्मास्त्र फिल्म से तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की आवाजों में, राबता फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में और तमाशा फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आनंद लाल जी से शहनाई वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 मनपा कार्यक्रम नमदरलिम, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे महान भारतीय बोध गुरु आचार्य शांति देवा द्वारा रचित अमूल्य ग्रंथ अ गाइड टू दी बोधिसत्त्वस वे ऑफ लाइफ। इस पावन कृति का अनुवाद कर रहे हैं परम पावन तुलको तेनजिन ग्यूरमे रिंपोछे। कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में, 5:35 पर मोनपा कार्यक्रम में आप सुनेंगे तवांग मठ के गेलोंग दोर्जी नामगे और अन्य भिक्षुओं से चंद्रजीत छोगा। कल शाम 6:00 लडीमसरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जिदुंदरी में आप सुनेंगे तवांग मठ के गेलोंग दोर्जी नामगे और अन्य भिक्षुओं द्वारा गाय चंद्रजीत छोगा का शीज बाग। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कविताओं पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता, कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, शाम 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने और रात्रि 8:00 फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुद्दा में, कृपया हमारे साथ बने रहें।

द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत

0: CFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi held restricted and delegation level talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in several areas. In a joint press statement, Prime Minister Modi said, the India-EFTA trade and economic partnership agreement

0: मैं हूं खांडू पेमा और मेरे साथ है मेरी सहपाठी मिस तेंजिन छोटन। हम दर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय की चौथी सत्र के छात्र हैं। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस डॉक्टर दिव्या पांडे जी को। तो डॉक्टर मैम, हम आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग यानी पोषण युक्त बागवानी के बारे में कि पोषण युक्त बागवानी क्या होता है और यह हमारे स्वस्थ व जीवन शैली के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग क्या होती है।
1: न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग जो है वो हमारा कि थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स ये सब कैसे बैलेंसिंग अमाउंट में आपको मिले वो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि पोषण युक्त कैसे रहेगा। मीन्स जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने में यूज कर रहे हैं वो मिक्स करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा पोषण बागवानी जो यूज करने का मकसद ये है।
0: जी मैम, तो अगला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि आज के समय में पोषण युक्त बागवानी की क्या महत्व है।
1: पोषण युक्त बागवानी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ये है कि आपको थ्रू आउट ईयर वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स का सेवन हम कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपके प्लेट में मिलता रहे पूरा साल, और जो भी आपका वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो मिक्स वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उस पे ध्यान देना है हमें, और वो हमारे डाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की वो 300 से 400 ग्राम पर डे हमारे डाइट में वेजिटेबल्स होना चाहिए। इसी के साथ हमारा फ्रूट्स भी 100 ग्राम पर डे हर दिन आपके डाइट में होना चाहिए। तो ये जो पोषण वाटिका आपका जो गवर्नमेंट का है न्यूट्रिशन किचन गार्डन उसमें हम फुलफिल कर पाते हैं जब इस तरह से गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसको अच्छे से सुचारू रूप से करके ढंग से लगा के एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को यूज करना है, तो ये सब करके हम पोषण बागवानी को बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं।
0: जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि पोषण युक्त बागवानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही हमारे पर्यावरण तथा हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत लाभदायक होती है।
1: अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो पोषण बागवानी है वो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हेल्दी है आपका, और इनकम जनरेशन का भी काम करता है क्योंकि जो थ्रू आउट द ये जो सरप्लस वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसको हम मार्केट में ले जाके सेल करके भी एक अच्छा आमदनी का सोर्स है, हमारे लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा आपका एक पोषित जो है किचन गार्डन, और आपका खुद का भी जो जिसके भी घर में इस तरह का न्यूट्रिशनल किचन गार्डन अगर है तो उनके घर में भी जल्दी कोई बीमार नहीं होगा क्योंकि वो लोग मिक्स करके खा रहे हैं प्लस पर डे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इस नाते वो हेल्दी रहेंगे और ये अच्छा है।
0: जी मैम, तो जैसा कि हम कहते हैं कि घर में लगाई गई सब्जियां और जो फल है वह बाजार से खरीदी गई सब्जियों और फलों से कई बेहतर होते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण के मामले में घर के जो सब्जी या फल है वह बाजार की चीजों से कैसे बेहतर है। मैम,
1: बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो घर में लगाई गई सब्जियां हैं उसमें हमने पौधों को टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, जो हमारे किचन के वेस्ट हैं वो पानी उसमें जाते हैं प्लस जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं खाद बनाते हैं उसका यूज करते हैं, तो मीन्स कि उसमें कोई भी केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो वो एक लार्ज कमर्शियल पैमाने पर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है उगाते हैं कमर्शियल लेवल पे तो वो अपना बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं उसमें, तो उन एक फार्मर्स को बार बार समझाने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता रहता कि कितना प्रपोर्शन में हमें केमिकल यूज करना है, कितना अमाउंट में डालना है, एक पौधे को कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइक टोमेटो में इंडोफिल का बहुत ज्यादा यूज है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो बार बार जो है उनको अमाउंट नहीं पता है कि किस अमाउंट में डालना चाहिए एंडोफिल को, तो ये चीजें जो है उनको बाहर से जो ली गई वेजिटेबल्स है उस पर डाउट रहता है।

0: है कि उसमें जो है उनका जो प्रपोशन है फर्टिलाइजर्स यूज करने का वो ठीक नहीं होगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी होंगे, लेकिन जो हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे अपने खाने के लिए यूज करेंगे उसमें जो है हम उस तरह के जो नेचुरल केमिकल है उसका यूज करेंगे, तो इस वजह से वो हेल्दी होते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गांव या निम्न आय वाले परिवार यानी लो इनकम वाले परिवार है, उनमें ज्यादातर लोगों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की समस्या देखी जाती है। तो यदि हम पोषण युक्त बागवानी करें तो इस समस्या को कम करने में कैसे मददगार हो सकती है?
0: ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर हम न्यूट्रिशन किचन गार्डन एक जो विलेज है जो कम आय वाले हैं उनके लिए यूज करें, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं, अगर हम उसका सेवन करते हैं अच्छे से तो वो हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, मीन्स कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर फार्मर्स जो है अपने खेती में न्यूट्रिशन किचन गार्डन का यूज कर रहा है, उस तरह से जो एक ऑब्जेक्टिव उसका है किचन गार्डन का किस तरह से लगाना है उसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो वो निश्चित तौर पे कुपोषित नहीं होंगे और माल नरिश्ड नहीं होंगे, वो अच्छा नरिशमेंट होगा उनका और हेल्दी रहेंगे और जल्दी उनको कोई बीमारी नहीं होगी।
1: जी बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अगला जो वार्तालाप है मिस तेंजिन छटुन जी जारी रखें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैम जो किचन गार्डनिंग यानी पोषण वाटिका की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समय तथा जो जानकारी के अभाव के कारण वो लोग इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पोषण वाटिका यानी किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे कर सकती है, यानी उन्हें किन किन बुनियादी चीजें यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होंगी?
0: न्यूट्रिशन किचन गार्डनिंग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगना है उसमें, बहुत बेसिक आपके ही जो सराउंडिंग एरिया मीन्स कि जो आपका घर है उसके चारों तरफ जो आपके पास खाली ज़मीन है उसी का यूज करके उसी को प्रॉपर बना के और उसमें जो बेड तैयार करेंगे उसमें बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही तरह के वेजिटेबल्स नहीं लगाने हैं उसमें, हर बेड में अलग अलग मीन्स कि जो आप 7 डेज एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज में जो आप एक 7 बेड जो तैयार कर रहे हैं तो हर बेड में हर तरह के वेजिटेबल्स होने चाहिए। कुछ जमीन के नीचे निकलने वाली सब्जियां हैं, कुछ क्रीपर्स हैं जो पेड़ के ऊपर होने वाले हैं, कुछ जो है आपके लटकने वाले हैं वेजिटेबल्स, तो इस तरह से हर तरीके का ये वेजिटेबल्स जो यूज करेंगे तब जाके वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा और इस तरह का यूज करना चाहिए।
2: जी धन्यवाद मैम। तो मैम, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास मैम जमीन की जो कमी होती है मैम, जैसे कुछ लोग फ्लैट्स में रहती है, तो मैम क्या वो जो है गमलों या फिर छत में पोषण वाटिका कर सकती है?
0: हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पोर्च है या जो उनके पास ओपन एरिया है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें वो पॉट्स जो है थोड़ा चौड़े शेप के वो लेके उसमें जो है उगा सकते हैं।
2: जी तो मैम, जैसे हमारे तवांग के क्षेत्र में अलग अलग मौसम में भी अलग अलग किस्म के फल या सब्जियां उगाते हैं, तो मैम एक पोषण वाटिका में ऐसी कौन कौन सी मौसमी सब्जियां, फल या औषधीय पौधे हैं जिन्हें उगाना उपयुक्त होगा मैम?
0: अगर आप तवांग के बारे में बात करना चाहेंगी तो मैं उसके बारे में आपको विशेष करके बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे विलेज में जाके विजिट किया है, देखा है, तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि कोई एक वेजिटेबल्स मीन्स कि अगर कहीं पे रेडिश लगा रहे हैं तो केवल रेडिश लगा रहे हैं उनके पूरे किचन गार्डन में, चिली तो चिली ही पूरा लगाया जा रहा है, फिर आपका ये लाई पत्ता है तो केवल लाई पत्ता लगाया जा रहा है, तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर वो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगाना चाहें तो उसमें आप सरसों का पत्ता भी लगाइए, पालक भी लगाइए, इस तरह का मिक्स करके अगर लगाएंगे, लेटूज लगाइए, इस तरह के मिक्स करके लगाने से आपके बॉडी में पोषक तत्व जो लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा या जमीन के नीचे वाली सब्जियों से मिलेगा जो लटकने वाली, वो तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो कोशिश करिए केवल एक तरह के वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में मत लगाइए, वो फिर आपका न्यूट्रिशनल किचन गार्डन नहीं होगा।
2: जी धन्यवाद मैम। जब कोई जो है मैम किचन गार्डनिंग करते हैं यानी पोषण वाटिका करते हैं तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या कीटनाशक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं।

0: जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो मैम, इसके अलावा ऐसे कौन से प्राकृतिक और कम लागत वाले विकल्प हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो?
1: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भी तरह का न्यूट्रिशन किचन गार्डन है उसमें केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है
0: जी।
1: वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब वो न्यूट्रिशनल कहाँ रह गया? ठीक है, तो आप न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की अगर बात कर रहे हैं तो केवल उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, आपके जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो यूज करना है उसके लिए, प्लस आपका वर्मी कंपोस्ट खाद, खुद का जो किचन से वेस्ट जो आपका वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का निकल रहा है, या जो उसका पानी का डायरेक्शन जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं या अपने अनाज को धुल रहे हैं, दाल को चावल को बनाने में जो पानी निकल रहा है वो कोशिश करिए कि आपके उसी खेती में जाए जहाँ पे आपने न्यूट्रिशन किचन गार्डन किया है, तो वो आपका हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा और ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहेंगे।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद मैम। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपकी जो सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए जरूर लाभदायक रही होंगी। तो मैं चाहूंगी कि आगे का वार्तालाप मेरे साथी खंडू पेमा जारी रखे।
2: जी मैम, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी जो है वो करने से एक महिला को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कैसे मददगार है?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और वुमेन को सशक्त बनाने के लिए इसका बहुत अहम भूमिका है न्यूट्रिशन किचन गार्डन का। सबसे पहले तो वो खुद का हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की वो हेल्दी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करेंगे और अपनी जो पूरी फैमिली है उसको वो इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खिलाएंगे उससे बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो भी सरप्लस वेजिटेबल्स है जो मार्केट में ले जाके सेल कर रहे हैं, और प्लस वो एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने आसपास के लिए और लोगों के लिए कि किस तरह से उसने न्यूट्रिशन किचन गार्डन करके प्लांट वे में बना के, प्लांट वे में उगा के सब्जियों को और खुद भी खाया है और फार्मर्स के बीच में ले जाके सेल भी किया है, जो आसपास के एरिया में लोग नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे, उससे उनका चौमुखी विकास होगा।
2: जी जी मैम, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारी जो महिला श्रोताएं हैं वो इस बात से जरूर प्रेरित होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जहां किसी परिवार या स्वयं सहायता समूह ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया हो?
1: अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है, अभी न्यूट्रिशन किचन गार्डन पे मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ, जिसमें जो मुझे दिखाई दी है वो यहाँ पे एक है, ये मिसेज नवांग छुजम जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो वेजिटेबल्स है और जो वो ग्रो करते हैं वो अलग अलग है, एक ही तरह की क्रॉप वो नहीं लगाती हैं, नहीं यूज करती हैं, और मैडम का FPC है खुद का, वो उसकी फाउंडर मेम्बर हैं, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर्स को देखने के लिए, वो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं।
2: जी मैम, और इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के छात्राएं हैं उन्हें पोषण युक्त बागवानी से कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि उनमें पोषण और प्रकृति के प्रति भी जागृत हो?
1: जहाँ तक न्यूट्रिशन किचन गार्डन की बात आती है तो उनके सिलेबस में एक लेसन होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए, उसके अलावा उनका जो न्यूट्रिशन का कोई अगर चैप्टर होगा तो वो फिर एक ट्रेनिंग उनको दिया जा सकता है, फिर उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बताया जा सकता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, किस तरह करने से उनको बेनिफिट होगा। और बहुत जरूरी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया या एडोलसेंट गर्ल बॉय जो भी है, इस एज में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइफ में कितना महत्व है, ये अगर उनको आइडिया हो गया तो अपने स्कूल से ये नॉलेज पाके वो अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो जाके फिर हेल्दी फैमिली तैयार होगी।
2: जी जी, बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आगे की वार्तालाप जो है वो जिन छुटन जारी रखे।
0: जी धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत है, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी अन्य संस्थानों द्वारा कोई योजना या ट्रेनिंग दी जाती है, यानी किसी प्रकार की सहायता? अगर हाँ तो वो आम जनता यानी आम लोगों तक कैसे पहुँचती है?
1: बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, मे बी और भी लाभ इससे उठाएंगे फार्मर्स हमारे। जो हमारा KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें मैं जो

0: सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी साइंस हूँ। इसमें है कि मेरा जो ऑन फार्म ट्रायल है वो न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे है। इसमें हम फार्मर्स को सेलेक्ट करते हैं और पहले फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल सीड, जो सीजनल वेजिटेबल सीड है, वो उपलब्ध कराते हैं, देते हैं और फार्मर्स को बताते हैं किस तरह से आप लाइन स्विंग करिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, वो फार्मर्स को देके और फिर उनको उन वेजिटेबल्स का नॉलेज भी देते हैं कि ये खाने से उनको हेल्थ में क्या सुधार होंगे, कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करता है सीजनल, और फिर उनको लगाने के तरीके बताता है, सोइंग करने के तरीके बताता है, कैसे प्लांट का ये नर्सरी करना है, कितने दिन पे उसको ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी चीजें बताते हुए, और मिक्स क्रॉपिंग करना है, ये सारी चीजें उनको बताता है कि हम लोग का जो संस्था है, और उनको थोड़े अमाउंट में वेजिटेबल सीड भी प्रोवाइड करता है।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए जरूर जानकारीदायक रही होंगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंचे हैं। तो अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें ताकि वे इस पोषण वाटिका को अपनाएं और अपने घर को हरा भरा व पोषक बनाएं।
0: मेरे तरफ से तमंग वासियों को यही संदेश है कि आप जितना हो सके सबके सब न्यूट्रिशनल किचन गार्डन, जो अपने आसपास के सराउंडिंग जो खाली एरिया है उसमें किचन गार्डन तो सबको ही करता है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में आपको कैसे करना है वो चीज बातों का ध्यान रखें। कोई भी प्लांट लगाते वक्त वो प्लांट हमारे लिए कितना हेल्दी होगा इस बात का बहुत ध्यान रखें। सीजनल वेजिटेबल्स लगाएं और कोशिश करें नया जो वेराइटी आ रही है, नया जो सीड आ रहा है या जो कोई नया वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको लगाने की कोशिश करें और हर तरह का वेजिटेबल्स लगाएं। मेरा यही कहना है उनसे, केवल एक तरह का वेजिटेबल्स लगा के वही खाने से उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें तो वो हेल्दी रहेंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या जी, आपने किचन गार्डनिंग के बारे में बेहद सरल, व्यावहारिक और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपकी बातों से हमें यह समझने को मिला कि किचन गार्डन सिर्फ पौधे उगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुमूल्य समय देने और इतनी सहजता से ज्ञान बांटने के लिए हम आकाशवाणी तवंग की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज का यह संवाद हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगा और वे भी अपने घरों में किचन गार्डन की शुरुआत करेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या पांडे से हुई एक भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम का विषय था पोषण नियुक्त बागवानी और इनके साथ भेंट करता थे दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के कुमारी खांडू पेमा और कुमारी तेंजिन छोटन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सब वक्त संध्या के 7:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। आज इसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं अपने फौजी भाइयों के लिए चंद चुनिंदा हिंदी फिल्म गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं देश प्रेम की भावनाओं से भरने वाले तराना ए हिंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं सहम बहादुर फिल्म से शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार हैं गुलजार तथा संगीतकार

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आनंद लेते हैं। बॉर्डर टू फिल्म से अरिजीत सिंह, सोनू निगम, दिलजीत दोसांज और विशाल मिश्रा के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर तथा संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टूर ने आज ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई, जो स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन ट्रांजिशन के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को परे दायरे की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और आर्थिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों पर सहयोग को और मजबूत करने की सहमति व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने आज नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सीमा सुरक्षा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और अग्रिम क्षेत्रों में गुडविल प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन शामिल है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों के अपने हालिया दौरे के अनुभव साझा कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति और तैयारी का आकलन किया। उन्होंने पूर्वी सीमा के कुछ हिस्सों में उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताते हुए सीमा प्रबंधन एवं अवसंरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ मजबूत समन्वय

0: बनाए रखा है। परिवहन राज्य मंत्री ओजिंदा सिंह ने आज खोंसा में परिवहन विभाग के आगामी स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अब तक किए गए विभिन्न तैयारियों की प्रगति की समीक्षा कर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। चर्चा में सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के सहयोग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। श्वेता सिंह ने कहा है कि इस अवसर पर 20 आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तारकर ने आज जीरो स्थित गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की संयुक्त मूल्यांकन बैठक का नेतृत्व किया। उच्च स्तरीय बैठक में लोअर सुबनसिरी और कई पन्नूर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि हर पात्र नागरिक को उसका पोषण अधिकार सम्मानपूर्वक और आसानी से प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों, CDPOs एवं DMO द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के संचालन में वित्तीय चुनौती पर भी प्रकाश डाला गया। वेस्ट कामेंग जिले के वांगहो गांव में 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर एंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आंसु जमसेनपा द्वारा की गई है। ये जीवन परिवर्तनकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता पहचानने और भविष्य की चुनौतियों का साहसपूर्वक सम्मान करने और सामना करने के लिए प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अवसर पर विधायक शैतन जोम्बे ने डॉ. जामसेनपा के प्रयासों की सराहना की और कहा है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाने, उनमें लचीलापन विकसित करने और उन्हें उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन टेरेन बाइक MTB कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। वे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI द्वारा एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान के लिए टीम इंडिया में चयनित की गई है। वे राज्य की एकमात्र महिला कोच है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई देते हुए टीम इंडिया की सफलता की कामना की है। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा मेचुका वेल स्कूल में कक्षा 6 और उसके ऊपर के छात्रों के लिए एक हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका संचालन भारतीय सेना के योग्य प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों को आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों, परिस्थितियों के प्रति सजगता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका लक्ष्य उनकी सहनशक्ति और जीवन के लिए आवश्यक कौशल को निखारना है। इस पहल में छात्रों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह से भाग लिया और साथ ही स्थानीय समुदाय ने भी इसकी भरपूर सराहना की। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों तवांग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, शियोमी, दिवांग वैली, अंजाव और चांगलांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, Itanagar, the news read by Narang Koyang. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Jonas Gahr Støre held restricted and delegation-level talks in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in areas including trade and investment, blue economy, circular economy, renewable energy, education, science and technology, artificial intelligence, space and Arctic region. Both leaders also noted the vast opportunities arising from the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, particularly in trade, technology collaboration and job creation. Following the talks, the two leaders issued a joint press statement. Governor Lieutenant General K.T. Parnayak, retired, called on the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan in New Delhi today. They discussed national security issues with special focus on Arunachal Pradesh, including border security, the vibrant village program and the implementation of goodwill projects in frontier areas. Drawing from his recent visits

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है शुभापुर बाईपास मेरठ के दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जया और दर्शन बाई जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कलाकार फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है इंदवार तथा संगीत संयोजन है कल्याण जी।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गोलाघाट असम के रमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लक्की जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है अमर प्रेम फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। इस गीत की गीत रचना है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है आर डी बर्मन।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रजौनिया मोहाबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के उदयवान जय हिंदपाल।

दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और साथियों से। और आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है दूसरा आदमी, फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के गीत रचयिता है मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीत संयोजन है राजेश रोशन।

श्रोताओं, अब यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नईवाला हनुमान गिरह राजस्थान के वेद मेदा और अलका मेदा जी की ओर से। आप दोनों की फरमाइश पर लीजिए पेश है रात और दिन फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मन्नदे ने। इस गीत के गीत रचयिता है शैलेंद्र तथा संगीत संयोजन है शंकर जयकिशन।

श्रोताओं कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पद्मा टॉकीज तपन नगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुराभी शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है मेरे जीवन साथी फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीत संयोजन है आरडी परमन।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्में गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। दोबारा सुनिएगा 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद

की सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ। अब आपसे रोज मुलाकात होगी इसी समय पर, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो खेल की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू।

0: पर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नजर है कि पांचवें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
1: आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को दिलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार 6वीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स के।
0: पंजाब की 6ठी हार और रोज बढ़ता उसकी जीत का इंतजार। प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है अगर कहा जाए तो, 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस 4 सीटर गाड़ी की पहली सीट पे कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से 3 यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपको?
2: शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो आज उनका मुकाबला चल रहा है और वो 14 अंक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। एक जीत उनको सुनिश्चित करनी ही होगी और अगर वो दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो उससे उनको दूसरे नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अपने प्लेऑफ के सफर के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़े, लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड है आईपीएल का विशेष कि कुछ टीमें धीमे दरवाजे से आती हैं, चुपके से आती हैं और प्लेऑफ में जगह पाती हैं। कुछ टीमें अभी भी ऐसी दौड़ में हैं, 6ठे 7वें स्थान पर हैं लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी कौन टीमें हैं जिनके लिए अभी भी संभावनाएं, विकल्प और समीकरण प्लेऑफ का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं?
2: देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली भी देखी जाए तो उनके पास भी एक पॉइंट का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। केकेआर भी रेस में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो अपनी स्थिति पूर्णतः मजबूत कर सकते हैं अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे 4 प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।
3: सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार 6ठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर

0: इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वेतोलिना ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलेना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी, और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहां भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की बात चली है तो अब बात करते हैं महिला हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली श्रृंखला में 4 मुकाबले होंगे, जो कि 26 मई से खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मई, दूसरा 27 को होना है, तीसरा मैच 29 मई को, जबकि अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाना है। और इस सीरीज के सभी मुकाबले जो हैं वो पर्थ हॉकी स्टेडियम में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए सलीम टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है, यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ से महिला टीम की जो सबसे अधिक नजर होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
2: पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज 7वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और HS प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और MR अर्जुन का 7वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपर निपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड़ जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहाग क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा है। और थोड़ी सी कसक जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी वो भी शायद यहां पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर

ट्वेंटी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान, और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी

0: बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
1: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एक नया एक्सपीरियंस है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी, घर परिवार से लेकर की आपकी एकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
1: मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी की बेटी हारना मत, मेरे पापा ऐसी आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे इस वजह से।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए
1: कभी भी डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ। मैं मैच में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
0: जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
1: मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी नेशनल में गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं वहां पर भी।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि हंसिका इस उपलब्धि से आप कितना खुश हैं और भविष्य में इस युवा बॉक्सर को आप किस मंच पे देखना चाहते हैं?
2: सुपर प्राउड है और पूरे क्षेत्र में, पूरे गाँव में और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हम अपने घर आए थे,
0: जी
2: इतना अच्छा जो है लोगों ने वेलकम किया है यहाँ पे कि हम आपको कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। पूरे मतलब कई हजार लोगों की जो भीड़ वहाँ से टप्पल पहुँची लेने के लिए, ढोल डीजे बाजे लेकर के, बैनर लेकर के, तो मतलब इन चीज के लिए कुछ बोलना तो मेरे लिए तो शब्द भी जो है कम है। पूरे क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार है। हैं सर, इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत। है नहीं सर, हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
0: जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया, जितेंद्र टोकस ने, कि किस तरह से ये खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही है, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए

0: नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और

अहिल्या नगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड